0: की जय। देवाधिदेव श्रीदेव पुरी जी महादेवा की जय। राधे भगवान श्रीदीप नारायण महाप्रभु जी की जय। श्री हिंदू धर्म साम्राज्य श्री परमहंस स्वामी माधवानंद जी सतगुरु देवा की जय। विश्व गुरु परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेवा की जय।
1: श्रीदीप नारायण भगवान की जय। श्रीदेव ईश्वर महादेवा की जय। श्री सतगुरु स्वामी माधवानंद जी गुरुदेवा की जय। विश्व गुरु श्री स्वामी महेश्वर

போய் த்ரோவா த்ரோவாஸ் வாங்க தோப்பி ஐயா சொல்லி புண்டரி காக்ஷன் சுவா ஐயா பின் திருச்சி புண்டரி காக்ஷே புனாத் புண்டரி காக்ஷே புனாத் புனாத் புண்டரி காக்ஷா ऐसे जल्ले करके पृथ्वी के मंत्र से मेरे पेशे से सलम चंदा कोर मौत बता आसन पवित्र करने ये विनियोग छोड़ देना है। ओम पृथ्वी तो याद है का देवी तुम विष्णु नादरता तुम चढ़ा रहे हम देवी पवित्र अंकुर जासनम ना हाथ में जल लेकर के प्राणायाम के लिए विनियोग करना है। ओम प्रणवस्य परब्रह्म ऋषि परमात्मा देवता देवी गायत्री चंद्र सर्वेशां प्राणायामे विनियोगः। 3 बार प्राणायाम करेंगे।

0: हो गया जी। पुनः हाथ में जल लेकर के विनियोग करेंगे।
1: Fan is in which direction?
0: पुष्प इत्यादि हैं
1: हाँ
0: ठीक है, आपने पुष्प ले लीजिए। अभी क्या लिया है अभी आपने? आपने
1: पुष्प और जल और अक्षत
0: ध्यान करना है गौरी गणेश जी का। ओम माँ गणानां त्वा गणपति गुंघवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपति गुंघवामहे, निधीनां त्वा निधिपति गुंघवामहे। वसो मम अहमजानी गर्भदमात्मजासि गर्भदम्मा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सशस्तशिवकः सुभद्रिकां पीलिवा पूर्वोऽस्वः। गणेशम्बिकाभ्यां नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतान् पुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि। परी गणेश जी के ऊपर चढ़ा देना अथवा भोले बाबा के सामने। पुनः फिर अक्षत पुष्प लेकर के प्रत्यक्ष देवता सूर्य भगवान का और अग्नि देवता का ध्यान कर लेना, अर्थात दीपक में स्थित जो देवता है। ओम मा अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्।

0: नमः ध्यानम ध्यानार्थे अक्षतांतस्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। फिर से अक्षत पुष्प लेकर के क्षेत्रपाल में होंगे, उन सभी को प्रणाम करना है। ओम भद्रं कर्णे शृणुयाम देवावतरं पश्येम क्षभद्रा स्थिरंग शिष्टवांगनोभिर्वसेम ही देवितायु पूर्व स्व क्षेत्रपालाय भैरवाय नमः ध्यानम ध्यानार्थे अक्षतां पुष्प समर्पयामि नमस्करोमि। हाथ में जल अक्षत पुष्प लेकर के संकल्प करेंगे, कुछ उसमें द्रव्य रख लेंगे। तीन बार विष्णु विष्णु विष्णु का उच्चारण करना है। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णु विष्णु विष्णु श्रीमन मुकुंद सच्चिदानंद से आज्ञा प्रवर्तमान से जीमनो ब्राह्मणों ने द्वितीय पर्वते वैवस्वतमंत्रे अष्टाविंशतितमे कलयुगे करे प्रथम चरणे जम्बू दीपे भारत वर्षे भरतखंडे आर्यावर्ते के देशांतर्गत काशी कुरुक्षेत्र पुष्कर प्रयाग आदि नाना तीर्थयुक्त कर्म भूमा मदरेखाया शुभदिग्भाग नर्मदाया सुप्रदेश देव ब्राह्मणा सिंधु श्रीमन्यपति वीर विक्रमादित समय तहा अशीतियुत्तर त्रिशत संख्या परिमित शुभनाम संवत्सरे पराभव नाम संवत्सरे श्री सूर्य उत्तरायणे शुभ ऋतौ वर्षा ऋतौ षष्ठ्यां तथौ उत्तर उत्तर सप्तम्यां तिथौ गौ नाम करणे उत्तर उत्तर बालव नाम करणे शोभन नाम योगे उत्तर उत्तर सौभाग्य नाम योगे पूर्वाभद्रपाद नाम नक्षत्रे उत्तर उत्तर उत्तराभद्रपद नाम नक्षत्रे सोमवासरान्वितायां मिथुन राशि स्थिते श्री सूर्य कुंभ राशि स्थिते श्री चंद्रे उत्तर उत्तर मीन राशि स्थिते श्री चंद्रे यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां उस क्षेत्र का नाम उस जिले का नाम स्त्रिलकी नामाख्य देशे
1: चेक रिपब्लिक देशे स्त्रिलकी नामक स्थान
0: चेक रिपब्लिक नामाख्य देशे स्त्रिलकी नामाख्य जनपदे शुभ स्थाने भगवत सन्निधौ अपना नाम और गोत्र का नाम लेना है। शुभ नामना शुभ गोत्रोत्पन्नो हम कहना है मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी प्राप्त लक्ष्म्याहा चिरकाल संरक्षणार्थम आपके जो भी शिष्य हैं जो इस पूजन में सहयोगी हैं उन सभी के कल्याण के लिए आपको मन में ही संकल्प लेना है। सकल मन ईप्सित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सवायम राजद्वारे व सर्वतेषु विजय लाभादि पुण्य फल प्राप्त्यर्थम हि जन्म हि जन्मांतरे व सकल दुर्तोपशमनार्थम चतुर्विध पुरुषार्थ संसिद्ध्यर्थम जन्म कुंडल्याम लग्न कुंडल्याम व जायमान अरिष्ट निवृत्त्यर्थम श्री साम सदाशिव चरण कमलेषु प्रीति प्राप्त्यर्थम रुद्राभिषेक कर्म अहम करिष्ये सामने ही छोड़ देना। ओम जागृत दूरमदैत्यवंतुसुप्तसतथैवैति दूरंगमं ज्योतिकां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। पुनः अक्षत पुष्प इत्यादि लेकर के गौरी गणेश जी का ध्यान करेंगे, यहाँ से हमारा क्रम चल जाएगा पूजन का। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमः। अम्बे अम्बिके बालिके नमानेति कश्चन सशस्तशुकः सुभद्रिकां काम्पीरवासिनीं भूर्भुवस्तुः गणेशम्बिकाभ्यां नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतान् पुष्पं समर्पयामि नमस्करोमि। चढ़ा देना है गणेश जी के ऊपर, चढ़ा करके उनको प्रणाम करना है और उनसे पूजन करने की आज्ञा मांगना है। पुनः अक्षत पुष्प लेकर के ध्यान करेंगे। ओम मा जदक्रंधा प्रथमं जायमाना समुद्यं दुत्वा पुरी खाता सेन सपक्षा हरण सभा उपस्थित जम्मही जातंते अरवन्ना भूर्व स्वाहा कार्तिकेयाय नमः। ध्यानम ध्यानार्थे अक्षतान पुष्पं समर्पयामि नमस्करोमि। चढ़ा देना है। पुनः अक्षत पुष्प लेकर के कुबेर जी का ध्यान करना है। ओम मा कविदंग जवमंतो चिदिथं दात्यन पूर्वं वियूय इहे हे थांकणो हि भोजनानि देवरिह को नम उक्तिंज जयंती भूर्व स्वकुबेराय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतान पुष्पं समर्पयामि नमस्करोमि। चढ़ा देना है। प्रार्थना करके पुनः लेकर के अक्षत पुष्प नंदिकेश्वर जी का ध्यान करना है।

0: आयंगौ प्रश्नकमी दशदन्मातरं पुरः पितरं च प्रणयन्स्वः भूर्भुवस्वहनन्दित्येश्वराय नमः। ध्यानम ध्यानार्थे अक्षतान पुष्पं समर्पयामि नमस्करोमि। पुनः अक्षत पुष्प लेकर के नाग देवता वासुकी जी का ध्यान कर लेना है। ओम नमो सुसर्पेभ्यो जे के च पृथ्वी मनुजेन्तरिक्षे जे दिवतेभ्य सर्पेभ्यो नमो नमः। भूर्भुवस्वः वासुकी नागः नमः। ध्यानम ध्यानार्थे अक्षतान पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। बिल्व पत्र है क्या? ठीक है, अक्षत पुष्प लेकर के शिव जी का ध्यान करना है। ध्याये नित्यं महेशं विचित्गिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं वर्षमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तदममगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलवैहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं भूर्भुवस्वः साम सदाशिवाय नमः। ध्यानम ध्यानार्थे अक्षतान पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। पहले पूर्व पूजन करेंगे, बाद में उत्तर पूजन करेंगे। भगवान का चार बार जल से अभिषेक करेंगे, पाद्य अर्घ आचमन और स्नान। भूर्भुवस्व भगवते साम सदाशिवाय नमः। पादयोपाद्यं समर्पयामि अस्तिवर्गं समर्पयामि मुख्याचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। थोड़ा थोड़ा सा अभी सामग्री चढ़ाएंगे, दूध दही वगैरह, बाद में उत्तर पूजन के बाद सामग्री चढ़ाएंगे, थोड़ा दूध चढ़ाएंगे। ओम भगवते साम सदा शिवाय नमः। पय स्नानम ओम मा पयः पृथ्व्यां पय ओखदीक पयो दिव्यंतरिक्षे पयो धाः पयस्वती प्रदिशः संतुमजं मा। भगवते साम सदा शिवाय नमः। पय स्नानम समर्पयामि पय स्नानान्ते शुद्धोदके स्नापयामि शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। दधि स्नान भगवते साम सदा शिवाय नमः। शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि दधि स्नानम्। दधिकरावणो अकारिखंष्णो ऋष्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकरतृण आयो मुङ्कितारिखत। भगवते साम सदा शिवाय नमः। दधि स्नानान्ते शुद्धोदकेन स्नापयामि शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि घृत स्नानम्। घी है, घी है क्या? थोड़ा सा घी से लेपन कर देना है। घृतम मिमिक्षे घृतमसे जो निर्घृते श्रुतो घृतम वसे धाम अनुपदमावह मादेश स्वाहा कृतम वृषभ बक्षी हव्यम। भगवते साम सदा शिवाय नमः। तदस्नेह स्नानम समर्पयामि स्नाने पुनः शुद्धोदकेन स्नापयामि शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि भगवते साम सदा शिवाय नमः। शहद से स्नान करेंगे, शर्करा। ओम मा अपांगुरसमद्वय सगुं सूर्ये संतगुं समाहितं मा अपांगुरससजो रसस्तम्भो गृह्णाम तमुपयाम गृहीतोषीन्द्राय त्वाजुष्टं गृह्णाम्येकतेजोनिरिन्द्राय त्वाजुष्टमम् मा। भगवते साम सदाशिवाय नमः। शर्करास्नानं समर्पयामि शर्करास्नानान्ते शुद्धोदकेन स्नापयामि शुद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि मधुस्नानम्। मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्णः संतोखदी मधुनुक्तमुतोखसो मधुमत्पार्थिवगुंरजः मधुद्यौरस्पुनः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमान् अस्तु सूर्यः माद्वीर्गावो भवन्तु नः। भगवते साम सदाशिवाय नमः। मधुस्नानं समर्पयामि मधुस्नानान्ते पुनः शुद्धोदकेन स्नापयामि शुद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। थोड़ा सा तिलक अगर हो तो गंधोदक बना करके गंधोदक से स्नान करा दीजिए। ओम आयंगौः प्रश्नकमी दशदन्मातरं पुरः पितरं च प्रणयन्स्वः त्वां गन्धर्वा अखरस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा ब्रह्मान्निष्मादमुच्यत। भगवते सां सदाशिवाय नमः। गन्धोदकेन स्नापयामि गन्धोदकस्नानान्ते पुनः शुद्धोदकेन स्नापयामि शुद्ध जल से स्नान करना है और रुद्र सूक्त से 15 मंत्रों से अभिषेक करना है। फिर उसके बाद विनियोग इत्यादि करके अभिषेक फिर करेंगे। अच्छा, ये जूठा पात्र तो नहीं है
1: ना?
0: ठीक है, शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद अभिषेक। हरि ओम ओम भू ओम भुव ओम स्वाहा ओम मा नमस्ते रमण्यव उतो तैकवे नमः बाहुव्यामुत ते नमः जातेर्दृशिवा तनुरघुरापा।

नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय।

हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिव जटा

0: ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भगवते श्री साम सदाशिव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्रृंगार हो गया है भगवान का,
1: न्यास करवा दो।
0: हाँ ये जल छोड़ दीजिए, हृदय का स्पर्श कर लीजिए। ओम मा मनो ज्योतिर्कृतामार सबृहस्पतिर जन्नमि मंतनो त्रिशंड नगुं सहिमंद धातु स्वे देवा सहिमादयं तामों प्रतिष्ठयाम हृदयाय नमः। ओम अभोदिग्नि समिदा जनानां प्रतिदेनमि वाजति मुखा सम्मा जप्रा इभया मुज्जिहाना प्रभा नमः सुसतेना कमक्षं चिरसे स्वाहा। ओम आयंगौ प्रश्नमि दशदन मातरं पुरा पितरं च प्रयं स्वं शिखाय षट मर्माणि ते वर्मणा च दयामि सोमस्था राजामृतेनानुसाम उरोर्वदीयो वृणस्ते कृणोति यन्तं त्वानुदेहं दद्धुं कवचाय। हुं ओम विश्वत चक्षुरतविशतो मुखो विशतो बाहुर्तविशत स्वात संदाहुव्यन्धमति संपत प्रेरितया वा भूमि जनयन् देव एकं मित्रत्रयाविशत। ओं मानसोकेतन ये मान आयुखिमानो गोकुमानो श्रीखुरीलिखा मानो वीरान द्रवामिनो वदेहवंता सलमित्वा हवामहेस्राय पट। पुष्पाक्षर लेकर के भगवान का ध्यान करेंगे। ओम असंख्याता सहस्राणि जेरुद्रा अधिभूम्यं नातेकां सहस्रयो जने वधन्वानि तन्मत्सि गंगा तरंग रमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वाम भागं नारायण प्रियमनंग मदापहारं वाराणसी पुरपतिं ब्रज विश्वनाथं। भगवते साम सदाशिवाय नमः। ध्यानम ध्यानार्थे अक्षतान पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। भगवान का इत्र इत्यादि सारा लेपन हो गया है, श्रृंगार हो गया है,
1: आरती
0: भगवान, हाँ धूप दीप नैवेद्य फिर आरती। धूप की यदि व्यवस्था है तो ठीक है, दीप दिखा दीजिए
1: भगवान,
0: नैवेद्य में यदि कुछ है तो
1: है,
0: दिखा दीजिए भगवान। भगवान को तीन बार आचमन करा दीजिए, फल का स्पर्श करके फल चढ़ा दीजिए। उम्मा जाहा फल नीरजा फला पुपा जा शब पुणी बृहस्पति हसा शिवाय नमः। ऋतु फलानि समर्पयामि नमस्करोमि। कुछ द्रव्य दक्षिणा चढ़ा दीजिए भगवान को। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे पूतस जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीन्द्यामते मा तस्मै देवाय हविखा विधेम मा भूर्वस्वभगवते साम सदाशिवाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि नमस्करोमि। करोत्वर्धन के लिए गंध ले लीजिए।

0: दोनों उंगलियों में, अनामिका उंगलियों में जिसमें रिंग फिंगर। ओम मा अगुं चुनाते अगुं रुहो प्रचिताम परुखा परुहो गंधसे सोम तुमदाय रसो अच्युतः भक्ते साम सदाशिवाय नमः करोत्वदनार्थे गंधम समर्पयामि नमस्करोमि। भगवान को पुष्प से अलंकृत कर दीजिए। अहिर्व भो गई ही परजेति बाहुन जाया हेतिम परिबाध मानः स्तग्नो विश्वा वायुनानि बुद्धमान पुमान पुमागुं संपरिपात विश्वधावकते साम सदाशिवाय नमः नाना परमल द्रव्याणि समर्पयामि नमस्करोमि। आरती की थाल तैयार है?
1: हाँ तैयार है, सब तैयार है, उधर भी तैयार है।
0: मंत्र आरती करेंगे या
1: आप गाओ अपना जो भी आरती करनी
0: ठीक
1: या हम अपनी गा लें?
0: हाँ तो ठीक है, वो भी चलेगा।
1: ओम शलपुर जी
0: मंत्र आरती पहले
1: की जय। सुदीप नारायण भगवान की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। सुदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंद प्रजी सदगुरुदेव भगवान की जय।
0: जय।

हरि ओम हर हर हर महादेव जट मुकुट सिर ओ पर गंग बड़ी सोए ओ शिव मस्तक चंद्र कला है मस्तक चंद्र कला है त्रिभुवनम।

0: साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ज्ञानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा ॐ दीपज्योति परब्रह्म दीपं सर्वे मोहनं दीपनं सजते सर्वं संध्यादीपं सर्वसत्यम् ॐ नमो प्रभुदीपविनाशी आपि ब्रह्मा आपि विष्णु आपो किल शिवासि आपो नारदय आपो शारदय आपो जय शुक्रासि आपो ध्यानी आपो ज्ञानी आपो यो प्रकाशी आपो देव सब देवी आपो सूर्य प्रकाशी आपो ब्रह्म निर्वाणी आपो चौर्के वासी आपो वेदो के ज्ञाता आपो भक्तुर्वासी आपो सतनाम के दाता आपो नित स्वरूप के ज्ञाता ओम नमो प्रभुदीप ब्रह्मानंद अनुर्वासी असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् नाहं करता प्रभुदीपकर्ता महाप्रभुदीपकर्ता हि केवलम् ओम शांति ओम शलपुरुष महादेव की जय देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय श्री दीपनारायण भगवान की जय हिंदू धर्म सम्राट परमान स्वामी श्री माधवानंद प्रजी सदगुरुदेव भगवान की जय विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमान स्वामी श्री महेश्वरानंद प्रजी गुरुदेव की जय श्री शंकर भोलनाथ की जय गजानंद जी महाराज की जय हरण पार्वती पते हर हर महादेव शंभो
1: हाथ में लेकर के जलेन शीतलीकरण पुष्पेव देवताय वंदनम आरोग्यार्थे आत्माय वंदनम आत्म कल्याणार्थे देवताय वंदनम पुष्प लेकर के पुष्पांजलि ओम माजनेन जनमय जंत देवा सानि धर्माणि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाते अनाकं महिमानः सचन्दय त्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवा ओम राजाधि राजाय प्रसयेने नमो वयम् वैश्रवणाय कर्महे समे कामान् काम कामाय मह्यम् कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यम् भोज्यम् स्वराज्यम् वैराज्यम् पारमेष्ठम् राज्यम् महाराज्यमाधिपत्यमयम् समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सार्वाय शान्तार्धापरार्धा कृतिव्ये समध्यपर्यन्ताय एकराडिति तदव्येशश्लोको विगितो मरुतः पारमेष्ठारो मरुतस्यावसङ्ग्रहे आवीक्षितस्य नाम प्रेर्विश्वे देवाः सवासदिति ओम दिशवतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वात्स्वात सम्बाहुव्यां धमति सम्पतितं द्यावा भूमि जनयन्तेव एकः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तप्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रप्रचोदयात् सेवन्ति काबकुलजं पकपाटलाब्जे कुन्नागजाधिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरे वे त्वां पूजयामि शिवशङ्कर मे प्रस्फुट नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयाग्रहाणपरमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिस्समर्पयामि एक दो पुष्प लेकर के सभी का स्पर्श करवा दीजिए छह किसी को कह करके और वो पुष्प फिर चढ़ा देंगे
0: And let everyone touch this flower, and then I will offer it.
1: जब तक दूसरी प्रक्रिया हम लोग करेंगे पुष्प लेकर के भगवान से क्षमा क्षमा प्रार्थना करनी पापो हम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभवः इमां पार्वतीनाथ सर्वपाप हरो हरः मंत्रहीनं पिजाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वरं यद पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तमे यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। भगवते साम सदा शिवाय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। हाथ में जल लेकर के जो हमने पूजन किया है वो सभी भगवान को समर्पित करना है, कहना है अनेन सफल अर्घ्येण सफलः अस्तु सदा मम मया यत शिव पूजन कृतेन तत्।

0: सर्वम्
1: सर्वम्
0: शिव
1: शिव
0: चरण
1: चरण
0: कमलेषु
1: कमलेषु
0: प्रियन्ताम्
1: प्रियन्ताम्
0: न मम अनेन सफलार्घेण सफलोऽस्तु सदा मम भगवते श्री साम सदा शिवाय नमः। भगवान को प्रणाम कर लेंगे आसन के नीचे जल छोड़ करके। ले शंकर।

0: बोले श्रीदीप नारायण भगवान की जय। श्री श्री देवपुरी जी महादेव की जय। हिंदू सनातन सम्राट परहंस स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परहंस श्री स्वामी माहेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय। श्री आलकपुरी जी महादेव की जय।
1: सत्य सनातन धर्म की। ओम शांति शांति शांति।

0: that will spread the knowledge to the towards the world. So that's why they donate Brahman, priest, and then intellectual person. And he came, he arrives on his gate. So he's very adorable and kind and generous demon. And he said, well, I can give you. That's not a problem. That's okay. So, and what would you like to ask? And the poor Brahmin trickfully asks, well, I don't need anything except your Krishna Kavach, he said. Oh, Krishna Kavach? What you need? Who are you? I thought you are asking some rice or some money or some land. You are asking Krishna Kavach. That is my favorite things. He said, well, you already promised that you want to give. If you don't want to give, that's all right. I'm going. You know that. Once you promise and you don't give, what will be the result? And he always wanted to curse or something, obviously. And Shankaracharya is scared. Well, all right. I'm going to give you Krishna Kavach. And he hand over the Krishna Kavach to the Brahman. So his first power was Krishna Kavach. That was meditative power from the Brahma. Then the Vishnu snatched it. So that's why when you don't take that ghee from the straight finger, what you do? Squeeze. So in the same way, the Vishnu also did the trick and snatched the Krishna Kavach. Shankhasur bahut balsali tha. और उसके पति बता सो पत्नी के धर्म से वो बलशाली हो रहा था लेकिन क्या है उसके साथ साथ कृष्ण कवच था और विष्णु ने क्या किया कि कृष्ण कवच छीनने के लिए क्या किया कि उसने एक गरीब ब्राह्मण के भेष धरा गरीब ब्राह्मण के भेष धरने से उसने शंखचूड़ के साथ में जाकर क्या है कि भिक्षा मांगा ओम भिक्षाम देही ओम भिक्षाम देही ओम भिक्षाम देही बोल के मांगा जब भिक्षा मांगा तो क्या है कि शंखचूड़ के साथ में तो असंख्य धन था दौलत था सारे था एक वृद्ध ब्राह्मण के लिए देने के लिए क्या नहीं था उसने अच्छा ठीक है मैं देता हूँ बोला तो ब्राह्मण ने बोला चलो संकल्प तो कर लो पहले तो जब जो कोई भी संकल्प करते हैं तो देना ही पड़ता है नहीं तो उसको श्राप लगता है और उसको क्या है श्राप से और पाप लग जाता है तो ब्राह्मण के देने के लिए उसने संकल्प कर लिया संकल्प करने के बाद में उसने मांगा तो क्या चाहिए वृद्ध ब्राह्मण तो उसने बोला कि मेरे लिए और कुछ नहीं चाहिए प्रभु आपके पास में जो कृष्ण कवच है वही चाहिए तो वो क्या है कि आश्चर्यचकित हो गया अरे ऐसा वृद्ध ब्राह्मण मैंने सोचा सोच के संकल्प किया था ये तो झूठे है ये तो जाली है तो वही के भगवान के ये माया के खेल है चलो संकल्प तो कर लिया है अब बोलने के बाद में देना ही पड़ेगा तो उसने क्या है कि दे दिया तो कृष्ण कवच तो वो दानव का आधा बल कृष्ण कवच में था वो निकल गया जय बोलिए शिव भोले बाबा की जय सो नाउ वी विल हैव वन भजन एंड वी विल गो अहेड सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वी कीप डूइंग इट्स अ लॉन्ग स्टोरी बट इट्स अ समराइजिंग वी ऑलरेडी फिनिश 5 चैप्टर्स व्हेन वी कम अराइव हियर हरि ओम
1: ओम बोले श्री दीपनारायण भगवान की जय श्री देव पुरुष महादेवा की जय श्री श्री माधव कृष्ण भगवान की जय विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम श्री स्वामी

And Gandaki in the naming also, couple of thousands of years. But you can see there is a such a practical things. I did myself. I went in Kali Gandaki after reading this book. And I found out many saligrams. When we break that saligram, inside there is a chakras. And still you can yourself in your life, you can go and prove yourself. And it is saying that if you take bath in Gandaki, whatever the water is coming from the saligram, you will have the many, many lives punya. तो आपके लिए क्या है, बहुत पुण्य को प्रदायक होगा अगर काली गंडकी में जाके आप स्नान करोगे तो. इसलिए दिस इज अ वंडरफुल स्टोरी एंड प्रूव्ड स्टोरी, प्रूवन स्टोरी. एंड नॉट ओनली दैट सेइंग, नॉट स्टोरी, नॉट दैट इज ओनली कंजर्वेटिव और समबडी सेज इन बुक. यू कैन गो एंड एक्सपेरिमेंट ऑन योर ओन एंड और यू कैन फाइंड आउट हियर एज वेल. सो दैट्स व्हाई इन नेपाल द काली गंडकी देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिमेज गोज. And at the that's origination of the Kali Gandaki is Muktinath, and in the Muktinath you can see the still the fire, continuous fire. It's not man-made fire; it's a holy fire. You can see there the fire is flaming all the time. It's like a volcano, but it's not volcano because of some the chemical. The fire is coming there continuously, and it is saying the fire of Brahma, Vishnu, Mahesh. And so in the river you can see the saligram. And wherever in around the world it is supplying now, that is from the Kali Gandaki. And Kali Gandaki is Tulasi's physical body. That is after she loses her that integrity. She loses her patibrata dharma. So that Kali Gandaki river is the body of the Tulasi. And when she get the blessings, Tulasi, and from that day, Tulasi and Vishnu is together. And Tulasi went to Vaikuntha. And she is worshipping everywhere around the world. You also love Tulasi, isn't it? Basil. The basil hops in Europe, in America, in Australia, any countries nowadays. The basil have got different species. But if you find the original one, that is a wonderful. And newly invented here, there is in India, there is one research center called National Center of Biological Science that did the experiment. That short form is NCBS. So, and that technology, that laboratory tested, and Tulasi have got such a power, it has got antifungal, antibiotic, or anti-cancer elements in it. That's why it's already herbs, popular herbs. And later on, that Tulasi is acceptable, and when you die also, the Tulasi is very important. And in everyone's house, there is Tulasi in Hindu's house, in Sanatani's house. And the Tulasi is the continuously it provide you oxygen. Jai boliye Narayan Bhagwan ki. Jai boliye Tulasi Mata ki. Jai namastu Tulasi Kalyani. Namo Vishnu Priye Suve. Namo Moksha Prade Devi. Navasampada Pradayike. Namastu Tulasi Devi. Namo Vishnu Priye Suve. So it is the beloved ones of Vishnu now. So that's why we salute the Tulasi. From that time, continuously, she is serving this universe. Many, she is avoiding, she is healing, she is removing many difficulties, cancers, all the sickness. That is, she has got the power. That's why if you are also flying back to Europe, it's a better if your quarantine, if your custom allow you. So take some Tulasi seed with you, if you haven't already done this. And Tulasi is the wonderful, it need to go everywhere. And this is for the human welfare. Everyone deserves to take advantage from this divine herbs, Tulasi. That's why Tulasi is worshipped every Krishna temple, every Vishnu temples. And Tulasi is offering to Saligram. And Saligram is amazing holy stone, black stone, that is not available anywhere around the world except Himalayas in the Kali Gandaki River in Nepal. So anytime if you go, you can find Saligram. Maybe you can see and have a look somewhere else here also. That is, what is the Saligram? So that is the holy Vishnu's stone. That because of the curse of the Tulasi, it is saying that as a Vishnu. That's why many people, they keep at least five Saligrams. The five Saligrams, one represents Shiva, one for Surya, the sun, one for Devi, one for Ganesh, and one for Vishnu. This Pancha Devata. So everyone, they worship Panchayan in their home. In Panchayam, that's a five Saligrams. So everyone,
can keep in Shaligram and Tulsi. It has got medicinal benefits, herbs, and also whenever you sick, whenever you are a problem, that you go to hospital. In hospital, what they do first, then they supply first is oxygen mask. So nature will give you oxygen masks in your home. When you plant Tulsi in front of your door, in your flower plant, that is continuously for free, without ambulance, without doctors, without anything, she's going to give you free that Tulsi is oxygen. And that herbs is useful for your anything, for fever, for tonsillitis, for back pain, for any difficulties, even cancer. It shows like antibiotic there, antifungi or antibacterial Tulsi. If you put in tea, there is Tulsi tea as well. If you wear Tulsi mala, that also helps your blood pressure. If you put always 2 pieces of Tulsi, that removes the bacteria and helps you. The Tulsi is the amazing herbs. When you know this one, so no matter in this world, Tulsi doesn't choose any caste, culture, group, nationality or gender. It is for everyone, everywhere. It is helpful. So you can utilize this is and Tulsi's Mahima. And Jai Bali Siyavara Ramachandra Ki, Jai Vishnu Bhagwan Ki, Jai. जब शंखचूड़ को जब जब से शंखचूड़ का बल बहुत बल गया बड़ा था क्योंकि पत्नी व्रत धर्म से तब क्या हो गया कि विष्णु भगवान छल करने के लिए गए जब विष्णु भगवान ने जो कृष्ण कवच छीन लिया वृद्ध ब्राह्मण बन के उसके बाद में पति बनकर घर में चले गए और दानव शंखचूड़ के भेष धारण करके तुलसी के घर में चले गए तुलसी के घर में चल गए तो तुलसी आ गई कि उनके स्वागत करने के लिए विष्णु भगवान के उसने तो नहीं देखा उसने तो सोचा कि हमारे पति आ गए तो भूले वाली तुलसी ने क्या किया पति आ गए समझ के उसको सलाम कर लिया पाँव धो लिया घर में लेकर गया खाना दे दिया रात में फिर रतिक्रिया किया और रतिक्रिया करने के बाद में जो पति व्रता धर्म है पत्नी का नष्ट हो गया इसलिए कोई भी विवाहित नारी तो अपने पति छोड़ के किसी के साथ में रहती है तो उसका पति व्रता धर्म नष्ट हो जाता है ऐसे करके अगर पति भी कहीं किसी को संबंध रखता है अपने पत्नी होकर भी तो उसका भी पत्नी व्रत धर्म नष्ट हो जाता है तो इस दुनिया में पति व्रत धर्म और पत्नी धर्म सबसे शक्तिशाली है जो विष्णु भगवान और लक्ष्मी और जो पार्वती और शिव और ये आप देख सकते हैं शंखचूड़ और तुलसी में भी जब इनका पत्नी व्रत धर्म जो पति व्रत धर्म नष्ट हो गया तो शंखचूड़ दानव भी कमजोर होने लगा जय बोलिए भगवान नारायण की जय तो इसका अर्थ क्या है कि जब आपको घर में पति पत्नी के बीच मेल है तो दुनिया कोई नहीं बिगाड़ सकता है आपको ना तो पड़ोसी बिगाड़ सकता है ना तो भाई नहीं तो कोई जब पति पत्नी में कलह पैदा हो गया तो शक्ति छीन लेता है तो घर फिर टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है और जितने भी आप देखावटी के लिए पति पत्नी हो जाते हैं और पति के दुश्मन पत्नी ही हो जाती है तो इसलिए बोलते हैं कि एक आदमी ने पूछा कि पत्नी और दुश्मन में क्या फर्क है तो वो आदमी ने बताया कि दुश्मन दूर में रहता है और पत्नी साथ में सोती है लेकिन दोनों दुश्मन है तो मतलब जिसको साथ में प्यार नहीं है अच्छा नहीं है तो ये शत्रु के रहता होता है इसीलिए क्या है कि जब मिलन होता है वो शक्ति बन जाता है तो विष्णु ने भी वो शक्ति छीन लिया तुलसी को तुलसी बहुत गुस्सा में आ गई जब पता चला कि ये विष्णु तो छल करके मेरा धर्म को लूटने के लिए आया तो आप ऐसा पाप करने के लिए आया तो मैं श्राप देता हूं तो उसने श्राप देने से पहले विष्णु ने बोला कि तुलसी इससे उपाय कुछ भी नहीं था क्योंकि आपके पति दानव ने सारे संसार में क्या किया कि परास्त कर दिया देवता के लिए कुछ जगह ही नहीं है इसलिए क्या है कि मैंने ऐसा करना पड़ा माफ दीजिए तो तुलसी ने क्या किया श्राप कर दिया श्राप दे दिया श्राप देने के बाद में क्या श्राप दिया पाषाण होके रहना पड़े दैट मीन्स तो यू नीड टू बी ए स्टोन तो आप पत्थर होकर रहना पड़े तो पत्थर होकर रहे तो उसी के श्राप से विष्णु भगवान शालिग्राम होकर रहे इसलिए शालिग्राम को हम क्या है कि विष्णु भगवान के प्रतीक माना जाता है तो उसी समय में जब श्राप देते समय में शिवजी आ गए और भोले भाले शिवजी ने क्या है तुलसी को समझाया तुलसी ये आपका कुछ भी दोष नहीं था लेकिन क्या है कि धर्म रक्षा के लिए विष्णु ने भी ये किया है इसलिए आप अब क्या करो कि कहीं कोई परपुरुष से जाने से शरीर क्या है कि अपवित्र होता है लेकिन मन नहीं हो सकता है आपको मन नहीं था आपको मन से नहीं किया है इसलिए क्षम्य है इसलिए कभी कभी क्या होता है तो गुंडे लोग आके रेप कर देते हैं उसका मन नहीं रहता है लेकिन शरीर तो अपवित्र हो गया लेकिन मन नहीं रहता है तो मन को हम माना जाता है स्वीकार कर लेते हैं तो फिर
भगवान भोले ने भी वही किया कि आपका शरीर त्याग कर दो, उसने शरीर त्याग कर दिया। वही त्यागा हुआ शरीर गंडकी बनकर बग रही है अभी, सत्ययुग से अभी तक गंडकी वही तुलसी का शरीर था। और गंडकी में ही शालिग्राम मिलता है, गंडकी नेपाल में पड़ता है, नेपाल के पोखरा के नजदीक मुक्ति क्षेत्र धाम है, वही धाम से गंडकी नदी बहती है, वो गंडकी के शिविर में शालिग्राम मिल जाता है। और शालिग्राम के अंदर में आप तोड़ के देखो तो वहां पे चक्र, सुदर्शन चक्र दिखाई देता है विष्णु का। इसीलिए ये कोई बनी बनाओ बात नहीं है, आप खुद जाके अभी देख सकते हैं, कलिकाल में कलिकाल का देवता साक्षात आप देख सकते हैं शालिग्राम को, और शालिग्राम के अंदर चक्र देख सकते हैं। अगर कोई भी शालिग्राम आने वाला नदी गंडकी में जाके, नेपाल के गंडकी में जाके स्नान करेगा तो वो पुराण में लिखा है आपको 100 योनि तक आपको धर्मात्मा बनकर रहने का आशीर्वाद मिलेगा और को पाप सारा छूट जाएगा। तो इसीलिए उस समय से तुलसी और भगवान विष्णु साथ में रहने लगे, और शिव जी ने बोला था कि तुलसी आप अब संदेह नहीं करो, भगवान विष्णु को स्वीकार करो, आप भी वैकुंठ चलो। और तुलसी ने बोला कि मेरा सारे समय में मेरा पूजा होना चाहिए। चलो ठीक है, वही आशीर्वाद मिला तो आज तक भी हम तुलसी को पूजा करते हैं, विष्णु भगवान के साथ में रखते हैं। और तुलसी आपको खान पान में रखे तो क्या हो जाता है, वो आपको दवाई हो जाता है, आयुर्वेद का औषधि है, दवाई है तुलसी, आपको कैंसर से लेकर सारा रोग को निवारण करता है तुलसी। घर घर में रखे तुलसी ऑक्सीजन देता है, तुलसी आयुर्वर्धक है, तुलसी क्या है कि आरोग्य देता है। इसीलिए तुलसी चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, सिख हो, सबके लिए समान अवसर समान लाभ देता है। तो सबके घर में तुलसी होना चाहिए, तुलसी पूजा करे नहीं करे फिर भी लाभ देती है, पूजा करे तो विष्णु भगवान खुश हो जाते हैं, आपको पाप भी नष्ट हो जाता है, आपको आरोग्य प्राप्त हो जाता है। तो उस दिन से तुलसी और शिव जी साथ में रहने लगे। जय बोलिए विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय। सो वी गोइंग टू चैंट नारायण, कृष्ण भगवान के क्या है, कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से, कृष्ण कवच से, वजह से ये युद्ध में शंखचूर दानव नहीं हारा था। अब क्या है, शंखचूर दानव हर गया और कृष्ण कवच विष्णु के पास में रह गया। कृष्ण इतने शक्तिशाली पहले भी थे, अभी भी है, और कवच शक्तिशाली है। तो कृष्ण भगवान को जय बोलो, जय बोले कृष्ण भगवान की जय श्री।

शरीर देह हत्या किया था वो गंडकी था। गंडकी अभी नेपाल के मुक्तिनाथ क्षेत्र से बहती है, शालिग्राम वहीं मिलता है। दुनिया में एक ही जगह है कि असली शालिग्राम मिलने का जगह। तो हम जाके खुद अपने जीवन में परीक्षण कर सकते हैं। कोई बनी बनाओ बात नहीं, कोई ये कहने वाला कथा नहीं है कि ये शिव पुराण में जो लिखा है वही अभी भी सत्चित सत्य को हम क्या है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए शिव पुराण में ये लिखा है, तो दूसरा पुराण में क्या लिखा है इसके बारे में। तो हम तो क्या है कि अभी आधुनिक दुनिया में हर चीज को परीक्षण करके ही लोग क्या है कि समझते हैं, विश्वास में लेते हैं। तो स्वस्थानी पुराण में क्या लिखा है कि वहां पे भी ऐसे ही कथा है, जालंधर नाम का दानव था बहुत बड़ा, वो क्या करता था संसार को दुख देता था और देवता को बहुत दुख देता था। ऋषि मुनि महात्मा शिवालय सार को क्या था वो तांडव करता था उसमें। तो इसीलिए सब लोग क्या हो गए बहुत दुखी बन गए। और उसके बाद में ब्रह्मा विष्णु महेश का क्या है बैठक हो गया, और बैठक के बाद में उन्होंने क्या किया कि जालंधर के पास में तो पत्नी व्रता धर्म है, पति व्रता धर्म है, जब तक वृंदा के पति व्रता धर्म नष्ट नहीं हो जाएगा तब तक ये बहुत बहादुर रहेगा, बहुत सामर्थ्यशाल रहेगा, इसीलिए विष्णु के साथ में जाओ शिव जी ने बताया। और सारे देवगण विष्णु के पास में गए, विष्णु ने हाँ कह दिया। उसके बाद भी फिर विष्णु ने छल करने के लिए गया। जय बोले विष्णु भगवान की जय। सो एंड देन विष्णु स्टार्टेड टू डिस्गाइज अगेन दैट इन स्वस्थानी पुराण इट सेज लाइक इन विष्णु चेंज हिज अपीयरेंस एंड ही लुक्स लाइक एग्जैक्टली द जालंधर एंड ही वेंट एंड द टाइम द वृंदा सो द विष्णु विष्णु बिकेम व्हाट हैपेंड यू नो he faint he lost there she was so beautiful and that sort of beauty the Vishnu that did not tolerate and he faint there and Brinda surprised who is this if this is my husband he cannot be faint he should not be unconscious he my husband is used to and then before coming Brinda before saying to Brinda Vishnu disappeared and ran away from there so and he was waiting for the second chance And second chance, then after a long practice, he practiced and he gathered courage and he went to the Brinda's house. And with bravely, oh Brinda, I just arrived. I'm very tired with the Mahadev fight. Can you please give me some food, snacks, coffee, tea, whatever he wanted? So he ordered, he asked Brinda. And Brinda said, my Swami, come here. I'll offer you my lord. I'm waiting for you. You must be tired. I'll give some good massage. Come here. And she gave good fruits and everything, and she did the arati for her husband, and everything done, and that Vishnu did his notorious things, he performs that, and the Brinda, overnight, Brinda finishes her Pativrata Dharma, finishes. And Jalandhar was fighting over there with Mahadev, and Vishnu is in Raslila with Brinda, in the Jalandhar's disguise appearance. And in the morning time, again the Vishnu send message or information to Shiva. Oh, the Shiva, now the project is done. Then you can fight. So, and then Mahadev started to fight. The Danav became very weak and he fell on the earth and died there. And the sound came. The big sound, massive sound came. And that went to the Parvati's, that went to the Brinda's house. And that was his pati. And she saw his husband is dying there and Vishnu is acting there as her husband. So that time she is very unhappy and she started to curse. But the Swastani Puran said that she cursed four cursing. There is not only one. She Puran says that only the Vishnu need to remain as like the Pasar, the stone. But there it says like the in Swastani Puran says she cursed four things. Oh Vishnu, you are the strong hearted, you don't have any kindness. That's why better you remain as like a stone and go and stay in Kali Gandaki in Nepal. So Vishnu accept that as a Kali Gandavi Saligram. And also the Brinda course, you are like the tree, like you didn't move. So that's why you need to remain, you're supposed to remain as a tree in the earth. So that you cannot move anywhere else. Because you disguise and tree cannot move. So that's why I curse you. You better remain as a tree. So
फिर उसके बाद में जब वृंदा को श्राप से क्या हो गया कि स्वस्थानी पुराण में वृंदा ने 4 श्राप दे दिया। शिव पुराण में जो जो बात है वही है, लेकिन स्वस्थानी पुराण में जब वृंदा का जो पतिव्रता धर्म विष्णु ने नष्ट कर दिया, उसके बाद में वृंदा ने 4 श्राप दे दिया। पहला श्राप था कि ये विष्णु छलकारी तो जाके पत्थर बन के रहना, तो पत्थर बन के रहना पड़े तो उस टाइम से पत्थर शालिग्राम के रूप में रहे। फिर दूसरा श्राप था तेरे को पेड़ बन के रहना पड़े, तो पेड़ बन के रहना पड़ेगा मतलब कि पीपल बन गए विष्णु जी। और दूसरा तीसरा श्राप था कि आप ग्रास बन के बनना पड़े, तो इसलिए कुश ग्रास भी तुलसी कुश ग्रास भी विष्णु का रूप है, कुश ग्रास बन के बन गए। और ऐसा करके उसने श्राप दिया आप कि झार होकर रहना पड़े, घास होकर रहना पड़े, तो तुलसी बन गए। इसलिए 4 श्राप था। तो वृंदा के श्राप से विष्णु भगवान श्राप मोक्ष के लिए पहले से अभी तक को मोक्षता के लिए रहे हैं। तो वृंदा कर्स तो विष्णु 4 कर्सिंग्स देयर। फर्स्ट थिंग इज बेटर यू रिमेन स्टोन, एंड देन सेकेंड ट्री, एंड थर्ड वन इज ग्रास। सो दैट्स व्हाई ग्रास द यू नो द ग्रास इज कुश ग्रास, द ग्रास कुश ग्रास इज ऑल्सो टेकन एज अ विष्णुज इनकार्नेशन, and that's why in prayer everywhere we use the kush grass. As we mentioned earlier session is kush grass is also medicinally is therapeutically very useful and very wonderful herbs. And similarly she calls the grass bush, the bush is tulasi, tulasi hokar rana pade, kush hokar rana pade और पीपल रुख होना पड़े। इसलिए इस दुनिया में पीपल को तुलसी को शालिग्राम को और क्या है कि हम जो पीपल को रुख शालिग्राम को तुलसी को कुश ग्रास को विष्णु के रूप पे इस्तेमाल करते हैं। ये आयुर्वेद के हिसाब से स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छा है, आपको बीमार ठीक कर देता है। और तुलसी खाना में डाल के खाए आपको बात रोग ठीक हो जाता है, तुलसी घर में रखे आपको चट्यांग नहीं आता है आकाश से और कोई भी बिस्मत नहीं आता है और भूत प्रेत पिशाच नहीं आता है। इसलिए कुश ग्रास चाहे जिसी धर्म का इंसान हो तो वो रखे तो उसके लिए लाभ होगा, तुलसी भी ऐसे करके लाभ होगा। सो फ्रॉम दैट डे विष्णु स्टार्टेड टू मोक्ष, मोक्ष के लिए आ गए, एंड देन ही स्टार्टेड टू रिमेन तुलसी पीपल शालिग्राम एंड कुश ग्रास। सो नाउअडेज इफ यू हैव टू प्रे विष्णु नॉर्मली यू गो टू एंड वर्शिप, एंड इट इज सेइंग विष्णु तुलसी पीपल इज अ इंडिकेटर ऑफ विष्णु। That's why that is the only tree in this universe that gives continuously oxygen. The other tree gives carbon dioxide as well. But people, that continuously. That's why meditation can be successful. The Buddha meditated where? Under the tree of banyan tree, the people tree. So that's why under the, that is easy. Without food also you can take oxygen. And without water, without food, also you can meditate. So the meditation becomes easier under the tree of the banyan tree. And also according to the astrology, if you have the mangalik, if you have that some difficulties in conjugal life, if you supposed to suffer some difficulties in your conjugal life, and there is a provision, you go and marry with the people. So people is Vishnu, and Vishnu will take the responsibility. And that is the because the course of the Vrinda. That's why any difficulties you have got husband and wife, the negativity will, the burden will carry by the people tree, and you will be free. If you Google that, why people does the banyan tree wedding, that's the mystery. तो इसीलिए क्या है कि वेद पुराण में भी बताया गया है कि पीपल क्या है, सबसे बड़ा सर्वाधिक लोकप्रिय जनहितकारी सर्वकालिक सर्वदेशीय और सर्वप्रिय वृक्ष है, जो वृक्ष आपको सर्वाधिक ऑक्सीजन प्रदान करता है। दुनिया में सारे पौधे पेड़ क्या करता है कि रात में और दिन में अलग अलग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, लेकिन पीपल का पेड़ कंटिन्यूसली आपको ऑक्सीजन हवा देता है, जो हवा मानव जीवन के लिए जीने के लिए अत्यावश्यक जरूरी है। पीपल हैव गॉट द ग्रेट वैल्यू, सो दैट्स व्हाई इन हवन ऑल्सो व्हेन यू डू हवन देयर नीड्स टू बी पीपल्स वुड, people woods, tulsi woods, kush grass, tulsi wood. So when you death also in cemetery, if your body is cemetery cremate with the wood of the people, kush, tulsi, it says like it will be purified your body and spiritually you will go in heaven, Sivaloka, Vaikuntha.
So that's why in the death time, many people in India, in other places, they collect some wood, little bit tulasi, little bit that panchapallav is. People, marne ke samay mein kya hai ki thodi

नुकसान कर देता है और ओजन लेयर को भी टाल देता है। इसीलिए पीपल के ट्री बहुत अच्छा है, हवन के लिए समीदा बना देता है। दिस इज द वंडरफुल स्टोरी दैट यू कैन एक्सपेरिमेंट इवन यू गो एंड इफ यू हैव द मेजरमेंट ऑफ द ऑक्सीजन दैट हैज बीन डन मेनी टाइम्स इन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो डिड सो इफ यू टेक दैट लेवल ऑफ ऑक्सीजन नियर क्लोज टू द पीपल ट्री और बाइजल ट्री द तुलसी के नजदीक जाके चेक करें सो यू विल गेट द हाई टेम्परेचर हाई लेवल सो दैट्स व्हाई ऑलवेज तुलसी इज ब्यूटीफुल एंड देन पीपल इज ब्यूटीफुल सो इट्स एज नो मैटर व्हाट एवर स्टोरी इज कनेक्टेड बट दैट इज अ वंडरफुल गिफ्ट फ्रॉम दिस यूनिवर्स फॉर द यूनिवर्स सो मेडिटेटिंग अंडर द बनियन ट्री एंड ब्रिंगिंग द कूस ग्रास इन योर फ्लावर पॉट एंड प्लांटिंग द तुलसी कूस ग्रास इज वंडरफुल दैट्स व्हाई आवर सेंट And Rishi Munis, they add that every prayer you need to have leaf of the Tulasi, leaf of the people, and kush grass. That's a compulsory. So if we don't find, that's okay. But if we have that one, that's a wonderful, perfect prayer. So in the kalas also, that we put that if you see that in the kalas there is a 7 leaf. If we don't find the 7, we'll put the 5. So in the 5 leaf, that is also panchapallav. Mango and people and aak and chaap so tulsi everything goes there so that's why the leaf is connected with ayurveda and therapeutically which is wonderful and so that's why when this value goes to the western world and there is expensive in you might came from the Japan in Australia and some other country Canada nowadays the gardener, they are growing the peepal tree, banyan tree, and which is very expensive tree. It takes 1,000 to 2,000 for one plant. So what a valuable now, isn't it? So better you can go and darshan here. You are in India. While you are in India, you can see and feel the tree, the peepal tree. Jai boliye Narayan Bhagwan ki jai. इसीलिए पीपल के रुख में ध्यान करने से पीपल के रुख के नीचे बैठ के ध्यान करने से श्वास प्रश्वासन में आश्वासन तो यही है और पीपल के क्या है पीपल में ब्रह्मा विष्णु महेश का भी वास है इसीलिए पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध भगवान जो नेपाल में जन्म हुआ था उनका उनकी उन्होंने भी ध्यान किया ध्यानस्थ करके उसी बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्ञा प्राप्त किया कब प्राप्त किया वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में जन्म वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में महानिर्माण और वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में ज्ञान प्राप्ति होने वाला ऋषि मुनि वही थे कि जो नेपाल के गौतम बुद्ध जो बोधगया में आकर मेडिटेशन किया था तो ऐसे करके रामतीर्थ स्वामी भी वही पूर्णिमा के दिन में उनको जन्म हुआ था पूर्णिमा के दिन में ही उनका मृत्यु हुआ था इसलिए कि वैशाख पूर्णिमा वैसे भी अस्पृश्य से उसमें भी जो पीपल के वृक्ष के नीचे आप कोई भी काम करे तो होता है इसीलिए फिर दूसरा चीज है जब भी शनि संकटा का जो आपको समस्या है तो ज्योतिष विज्ञान भी वही आपको शिकायत करता है कि शनिवार के दिन में जाके पीपल के पेड़ में पानी गिराओ तो पानी की कमी होने से वो आपको धर्म नहीं होता है ऐसा नहीं है जब आप सुबह पीपल शनिवार के दिन में पीपल के वृक्ष के नीचे जाएंगे तो आपको सारा नेगेटिविटी हो स्ट्रेस हो और जो प्लैनेट से आया हुआ कोई भी नेगेटिव वाइब हो दूर हो जाता है और आपको अच्छे ऑक्सीजन मिल जाता है इसीलिए आपको ग्रह पीड़ा से आप मुक्त हो जाते हैं जय बोलिए पीपल भगवान की सो इट इज सेइंग दैट इन एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो इफ यू आर सफरिंग सम प्लैनेटरी दैट इल इफेक्ट देन यू कैन गो अंडर द बनियन ट्री on Saturday and offer water it is saying that the remedy one of the remedy of the Saturn planets to remove to graha pida so why it is fruitful because when you go on Saturday that Saturday morning it is saying there is the god is residing in the trees on the branches if you don't believe if you don't want to believe that's fine but still you will get the same benefit that the oxygen will come there early in the morning the great oxygen of the peoples And also, if you pour the water, that's good. You are giving the watering the plant. And that's also dharma, obviously. And definitely you will be protected. So that's why the everything is and everything that has got science and it is practicing nowadays heavily and widely. Jai boliye people, Bhagwan ki.

जय बोले भोले बाबा की। सो इन शिव पुराण व्हाट एवर टॉक्स द सुस्तानी पुराण ऑल्सो द सेम थिंग एज आई मेंशन बिफोर इन टीचेस अस हाउ वी कैन रिमेन ऑल द टाइम इन अ डीप स्पिरिचुअल वैल्यू द लाइफ इज वेरी शॉर्ट एंड वी केम इन दिस यूनिवर्स दैट फॉर अ शॉर्ट लाइफ सो इट इज सेइंग दैट इन स्काई वॉट एवर लाइट गिव्स बाय द स्टार that much wide place it can see. That's why in our life also, whatever divine divinity or purity we can maintain, that much purity we can carry with us. So every stories, every philosophy, every that the information teaches us these things here. So that's why whatever you mean, the change your vision, visuality, तो शिव पुराण हमारे लिए और सारे वेदादि वेद क्या करता है कि हमारे लिए जीवन कैसा सरल बनाना है और शिव जी की तरह कैसा रहना है। और शिव जी ने बोला है कि मैं कल्प कल्प में आवश्यकता के अनुसार कभी ब्रह्मा बन के, कभी विष्णु बन के और कभी शिव बन के मैं क्या है कि संसार को चलाता हूँ। तो कभी कभी मेरा भूमिका रहता है ब्रह्मा का, कभी विष्णु का, कभी क्या है तो कभी रहता है शिव का। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई विभेद नहीं है और शिव से विष्णु बड़ा, विष्णु से ये बड़ा वो हो ही नहीं सकता, ब्रह्म एक ही है। तो इसलिए ब्रह्म एक है तो सबसे बड़ा शैव कौन है कि नारायण है, सबसे बड़ा वैष्णव कौन है कि फिर शिव जी है। वो तो हमने बारंबार बोलते ही आया है, सारे शास्त्रों ऋषि मुनि संतगण महात्मा सारे समय समय में उपदेश देते आया है इसके लिए। फिर भी जब संदेह रहता है तो संदेह क्या है कि इस कार्य बिगाड़ देता है, संदेह ही क्या है कि धर्म का नुकसान करने वाला है। तो इसलिए संशय आत्मा विनश्यति ही, तो किसने बोला है तो भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बोला है कि तो संशय करोगे तो उसमें क्या होता है कि आत्मा द्रवीड हो जाता है, मन बिगड़ जाता है। सो व्हाट एवर यू फॉलो ट्रस्ट, व्हेन यू ट्रस्ट देन डेफिनेटली इट विल हेल्पफुल फॉर यू। इट इज सेइंग दैट we always celebrate Hanuman Jayanti, isn't it? So Hanuman is a bhakta of Rama. We always celebrate Hanuman Jayanti. But in similarly, Arjun also the very close friends and bhakta also the Krishna. So why we cannot celebrate Arjun Jayanti? Because Hanuman is a devoted person. He never doubt. He never doubt. So he always respect and honor. There was no doubt for him. God exists or not. There is always he believe and trust. So that's why we celebrate the devotion of Hanuman. That's why we call Hanuman Jayanti. But do we celebrate Arjun Jayanti? No. Because Arjun also devotee. But he always doubt. He's asking, oh, what will happen? Oh, the Lord Krishna, I cannot fight. Oh, the Lord Krishna, you said meditate. But how can we meditate? And you said one time, that go and marry and remain in a dharmacharya. This is a confusion. So I'm in confused. So, and that's a continuously sarva dharman parityajya mamikam saranam braja. So Bhagavad Gita chapter 18 verses 66. Sarva dharman parityajya mamikam saranam braja. Aham tvam sarva pape bhyo mokshayishyami mahasuchaha. So Bhagavad Gita ke

18 अध्याय के 66 श्लोक में जो लिखा है वो भी क्या है कि सर्वधर्मान, मतलब कि कोई भी चीज आपका जो दानवीय चीज है, कोई भी असुर तत्व है, सबको छोड़ के एक निर्वृत्त होकर मानवीय धर्म ब्रह्म धर्म में निर्लिप्त हो जाइए, तो उसमें क्या है कि आपको बहुत से मुक्ति मिल जाएगा। इफ यू सरेंडर दैट चैप्टर 18 वर्सेस 66 भागवत गीता सेज इफ यू सरेंडर विदाउट एनी डाउट डेफिनेटली यू विल गो, यू विल क्रॉस द रिवर। इफ यू डाउट देन इट विल नॉट बी, दैट्स व्हाई इट इज सेइंग दैट इट इंक्रीज फेथ ऑल्सो, एंड फॉर द फेथ मेनी स्टोरीज इज कम्स, मेनी थिंग्स कम्स, सो दैट्स व्हाई देयर इज थ्योरीज। वन इज यू रिमेन हैप्पीली without doing material gain, with balancing material gain, or it's like a Charvak Siddhanta, the Charvak theory. The Charvak theory says like, yavat jivet sukham jivet, rinam krivet, gritam pivet, vastri bhutasya dehasya punaragaman kutaha. That means, yavat jivet sukham jivet. As long as you live, live happily. Enjoy, drink, dance, and no matter you have debt or not, then effort ghee. Ghee means like nectar. Enjoy your life. But that Charvak's theory is that said, but in spirituality it says like there is a great nectar. If you have the addiction of divine, you don't need to enjoy for wine. So in you can enjoy with divine, the divinity, spirituality is really good. So that's why it says like trust and follow the Shiva Purans. It says like from the Rudra Samhita to this, we can summarize, when we summarize that, the Tulasi's devotions. And how can it helps this society to unite husband and wife, society and family to family. This is the one of the wonderful story. And secondly, we can learn this one, great devotion, deep devotion without any doubt. Where is doubt, cut it out and continuously you follow. And later on, finally, it is saying that the Brahma is Vishnu and Mahesh, the Trigona, proton, neutron and electron. They merge together whenever it necessary. And no matter whatever powerful demon, whatever the power you have got, one day that will be seized. So that's why, that's the story from the Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga to now it's a discontinue. This is the wonderful story we studied in Rudra Samhita. And almost we finished 43 chapters of this Rudra Samhita, Panchama Yuddha Khanda, which is wonderful. And I think today we need to conclude this one. So, आज के लिए आज हमने क्या सुन लिया कि रुद्र संहिता में पहले से अभी तक क्या हुआ कि पार्वती जी का डिवोशन तो हमने सुन लिया था, ऐसे करके जालंधर को कैसा विष्णु भगवान ने परास्त करने के लिए वृंदा को सतीत्व हरण करना पड़ा, और सतीत्व हरण करने के बाद में उनका पति धर्म नष्ट हो गया, पति धर्म नष्ट होने के वजह से क्या है कि जालंधर दानव मर गया, इसलिए पत्नी बीच के जो धर्म होता है वो बहुत शक्तिशाली रहता है। आप कहीं भी रहो, जैसा भी रहो, कि शंखचूड़ दानव के लिए भी कौन थी बलवान, तुलसी का व्रत था। तो ऐसे करके फिर शिव जी के लिए पार्वती थी और विष्णु भगवान के लिए लक्ष्मी, जालंधर के लिए वृंदा, जब तक उनको पतिव्रता धर्म रहा था तो सदा वो अमर रहे। इसलिए आज के सोसाइटी में, समाज में तुलसी का महत्व क्या है, आयुर्वेद के हिसाब से पीपल के महत्व के बारे में आज चर्चा किया है शिव पुराण के। अब इस समय में हमको साराम समय प्रस्तुत करने का समय आ गया, तो कल हमारे लिए बहुत अच्छा ऐसे ही प्रसंग आ जाएगा। आप लोग जरूर से आना सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक, और शाम को चार बजे से लेकर छः बजे तक ये शिवपुराण महात्म्य हो जाता है। ये महात्म्य तीर्थ स्थान में बैठकर श्रवण करने का इसका महत्व तो अलग रहता है। आप कहीं भी हो तो इसके लिए आप क्या है कि याचना करके आ जाइए, शरीर मन तो पवित्र हो जाता है, जन्म जन्म के पाप भी दूर हो जाता है। तो इसीलिए तो शिव भगवान का दृष्टि उनके पवित्र सोर शब्द से हम इस्तेमाल करते रहे, जुड़ते रहे। जय बलिए सत्य सनातन धर्म की जय।

ओम शांति शांति शांति। पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमद्य।

देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। हिंदू धर्म सम्राट सद्गुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।

0: बोले श्री दीप नारायण भगवान की श्री देव पुरुष महादेव की श्री माधव कृष्ण भगवान की विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमान श्री स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।
1: Takový hluboký tón.
2: Strašný, slušný.

0: भगवान
1: की जय।
0: देव पुरुष महादेवा की जय। स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेवा की जय। महामंडलेश्वर जी अवतारपुरी जी महाराज की जय। अलकपुरी

जय। देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की जय। श्रीदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंदपुर जी सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वर आनंदपुर।

ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तस्मस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलचलम सर्वधिसाक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सतगुरुतम नमाम्यम।

भवभंजन भगवान सदा ही, गैर दारा पैसा, ही इज नॉट रनिंग बिहाइंड द माया, द प्रॉपर्टी और वट एवर अवर बर्डली थिंग्स. भवभंजन भगवान सदा ही, भवभंजन, ही हैव नो फियर, ही इज वन लाइक स्काई, भंजन ऑल द टाइम्स, भजन भजन भगवान सदा ही, ही इज दैट इज अ गॉड फॉर एवर. ताके कर्म कटे कर्म कलेशा, कटे मीन्स कट, ही कट्स द ऑल कर्म एंड कलेशा. कर्म मीन्स अवर कर्मास एंड कलेशा मीन्स अवर फाइटिंग्स. ऑल ही विल गिव अस द रिजल्ट एंड वी विल बी इन द पीस. हंस उबारण जग में आया, शुभ अवतार धरेशा. टू लिबरेट द स्वान मीन्स दिस आत्मा, भक्तास, यू आर ऑल स्वान, पीसफुली बैठे हो, वेरी नाइस, पीसफुल यू आर सिटिंग, लाइक ए वेरी पीसफुल स्वान, यू नो, मी टू, या, एंड महाप्रभु जी विल डेफिनेटली लिबरेट. हंस उबारण जग में आया, ही केम इन दिस वर्ल्ड टू लिबरेट ऑल दिस स्वान्स, दिस भक्तास, प्यार भक्तास. भगवान कृष्ण सेड, टाइम टू टाइम आई इनकार्नेट विथ माई योग माया एंड आई सेव लिबरेट माई भक्तास एंड किल द राक्षसास, द नेगेटिव एनर्जीज. सो आसुरी शक्ति एंड दैविक शक्ति, एंड दैट्स वाई ऑल अवतारास इन द हैंड गुड थिंग्स एंड वेपन दो बोथ. I remember many times Guruji said, in my hand, in one hand I have laddu, big laddu. In other hand I have a stick. What do you want? I said, laddu, then sit down and learn. That's it. Yes? Don't do stupid things. Yes? So, Hans Ubaran jag mein aaya, शुभ अवतार धरेता, एंड देयरफॉर हिज इनकार्नेशन इज शुभ, द बेस्ट, द गुड. श्री दीप कहे गुरुदेव नमामि, महाप्रभु जी सेठ, श्री दीप गुरुदेव, महाप्रभु जी सेठ, गुरुदेव नमामि, माय एडोरेशन, प्रणाम टू गुरुदेव, बारंबार आदेशा, एंड अगेन माय एडोरेशन टू दी ओ गुरुदेव. दीप नारायण भगवान की, देव पुरुष महादेव की, माधव कृष्ण भगवान की.

देव नारायण भगवान की, देवेश्वर महादेव, अलकपुरी जी महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म। ओम शांति शांति शांति।

चरा चर की आत्मा। श्री दीप नारायण भगवान शिवानंद जी महाराज की, अलकपुरी जी महादेव, देवादिदेव देवेश्वर महादेव की।

शांति शांति। सो आई टेल यू फर्स्ट दैट व्हेन वी आर हियर प्रैक्टिसिंग ऑल वेरी गुड, दोज हु आर सिटिंग इन द फ्रंट एंड अदर इज बैक साइड, then they don't know they are looking like this and they are lying to you. तो इनको दोनों बहनों को एक तरफ लगाओ next time. क्यों माता है भाई? ऐसा है कि आप या तो यहाँ से आके बैठा दो या वहाँ, तो आप दो बैठे हो तो पीछे वो लोग भलाई यूँ देखें फंसा यूँ करें. जरा बस मैं कहूँ कि अरे सोनी भाई बैठ रहे, मैं तो हमें ठीक है, हमें थोड़े थाने कटे उठाऊँ कभी, आज कल कराऊँ आज तो इसीलिए सत्संग सत सत और संग सत सत क्या क्या है, कितना है, क्या है, कैसा हुआ है, तो वो सत सत उसको कैसा आ जाएगा और नहीं रह जाएगा. सत संग तो कहता है कि संग किसके साथ रहे, संग किसके साथ में रहना है, जो दे आर गुड एंड दे लाइक एवरीथिंग एंड दे आर हेल्पिंग एवरीबॉडी, दैट इज कॉल्ड सत्संग. सत सत इज द गुड थिंग्स, बैड थिंग्स, एवरीथिंग्स. सत्संग then it is said, please come with me, we stay all together, be all we together like one, yes, then it is okay. Otherwise aadhe sitan like this se dud aage yu kare, fir aage bade bade aadmi hota hai na, wo bada bade ka matlab wo nahi keh raha hu, main uska keh raha hu jo thoda choto aadmi hai ni, wo to baitho aage. और मोटो मोटो बैठा तो वहाँ से आप देख सकते हो. एंड इफ यू नॉट दिस लाइक दैट देन दे आर लुकिंग ऑलवेज दिस साइड, फिर वो करता है ऐसा तो वो कैसा करे, फिर वो इधर करे, फिर वो ऐसा करता तो. सो फर्स्ट वी हैव टू लर्न हु शुड बी हियर फर्स्ट एंड देन सेकेंड एंड लाइक दिस, देन वी हैव ऑल. तो इसी सत सत क्या है, वो सत कहाँ है, वो सत कहाँ से आया है. सत केवल मनुष्य के लिए ही नहीं है, जानवरों का भी है. वो भी आता है तो उनके बच्चा होता है और वो बड़ा है तो बच्चे को आगे आगे लेकर के बैठती है. छोटे होते हैं ना all children, so to all people that are everywhere, they tell to them their mother, yes mother, but where make the child, yes in my, like this, even that, then it is said yes this is very good. So child is going front and mother is behind it, taki the children can be with mother very nice and that, and not going out, then what happens is something. So sat, wo satya hota hai, satya hi sat hai, satya hi satya hai, wo hi satya kaha gaya hai. To sat sang, aur wo sang kiske hai, ki sabhi ke ek saath, sabhi ko kisar nahi bak, but other one we will go this and we're going to sit like that. So when we come, you should come first already where you are sitting. So very nice satsang. To satsang ke bare mein ek bhajan lagao, ek bhajan lagao satsang ka, satsangiyon ki san hai na bhajan apna, babji ka hai na.

हाँ तो लगाओ तो बड़ा बाप जी का माधवानंद जी का है भाई। माधवानंद जी भगवान सारे विश्व में पधारे हुए हैं वो भी, और महाप्रभु जी जब भी इधर उधर जाते हैं तो कितनी जगह, एक आज यहाँ बैठे हैं तो कल वहाँ बैठ गए वहाँ, नहीं तो वो मेरे तो मेरा देश है ना यहाँ पर, मेरा देश बहुत बड़ा है, यू डोंट नो, सो मैनी कंट्रीज है, मैनी कंट्रीज, बट दे आर सिटी कंट्रीज है, बट अ वेरी बिग वन आर लाइक फिफ्थ इज आवर हमारा, तो इतना वो जो है दैट वॉटसन इज कमिंग फ्रॉम थेट फार फ्रॉम दिस वेर इट इज वाटर एंड इन वाटर में देर स्टिल वी आर अवर लैंड इज अवर लैंड वेरी मच यू नो दैट इट वॉज दैट टाइम वेल दिस ऑल द क्रिश्चियंस और दूसरे भी हैं जो है ना दे कम इन साइड एंड दे टॉक द इंडियंस ऑल लाइक दिस सो डोंट गो हो नो स्कूल जाना देना कुछ करना नहीं था ओनली दोज हू आर लर्निंग वेरी पीपल सो दे वेर लाइक डॉक्टर्स एंड दिस और दिस अदरवाइज ऑल पीपल वॉज अभी भी आपको ले रहे हैं अभी भी उनको बराबर नहीं जाने देते हैं तो फिर कितना करते करते मोदी जी के नहीं मोदी जी क्या दूसरे तो वहाँ सिफा कितना लटक कर किया या किया वो वहाँ कहाँ पर बैठे रहे लेकिन भगवान की कृपा से ऑल एवरीवन दे brought the already to India. So India ka kitna very big, big, big. I have not seen everything. India itna lamba chada hai, I was not here. I went to other countries. But I see somebody this and that and that. But how many countries have there and all have different language. Many, many, many, many languages hai Bharat mein. Lekin unhone sab karke Hindu bataya. Aur Hindu kahan se? Hindu bahut dur se hai ye. Kya nahi? Hindu kahan ka kisko kehte hain batao? Ha. Hai? नहीं संस्कृत में तो है सिंधु हाँ तो सिंधु तक का है हमारा इसमें आया है तो देखा ही नहीं है ना तो अभी हमारे क्या आगे इस साल में ऐसे आगे इन लोगों ने मुसलमान आगे खूब करा दिया वो है लेकिन वो तो हिंदी मुस्लिम्स जो है मुस्लिम के उनके वो नहीं है कुछ भी बहुत बस है दिखता है उनको और उसके आगे भगवान ही है बस और किसके ऊपर है ही नहीं और दूसरे कोई भी है क्रिश्चियंस है वो है हिंदुओं है उनके सबका है तो वो जितने मुसलमान हैं तो पहले हमारे हिंदू थे सब हिंदू हैं लेकिन हार्ड टू डू दे मैनी थिंग दिस So, therefore, we know that everything that in my country, and where my country is at, when I go to the airport, and then it's everywhere. Yeah? So, I'm coming always with aeroplanes. Yes? And I see there, from that, I see it's our India, Hamara idhar se. So that all my disciples from other countries, they have all understood everything and they practice here all the times and coming. Don't worry, they are not, but we want to come to here. The Swamiji have Maheshwaranand. So, what do I do with Maheshwaranand? I didn't do anything, but now. But he is doing it for me. Yes,
पहले मैंने कराया बट इस एंड आई टॉल्ड देम बट इट डिडंट नो आई हैव डन एंड व्हाट डू यू व्हाट विल डू एंड सो माय डिसिपल्स दैट एवरी बर्न इन द होल कंट्रीज होल वर्ल्ड कंट्रीज की अब दे आर कम एंड मेड सो इनका गवर्नमेंट इंडिया में कहते हैं कि महेश्वरानंद है वो अपने को हिंदुओं को इसको बुलाया है हुआ है तो वैसे ही करना चाहिए और मैंने कभी नहीं कहा इनको कि इन्हें हिंदू करो मैंने किसी को ना कहा कि हिंदू बोलो नहीं आप क्रिश्चियंस को बोलो आप उसको बोला आपका लेकिन बोलो कैसा क्या करो ये बात है नहीं तो मैं अगर ये इतना कि नहीं नहीं मैं तो हम मुसलमानों को इनका नहीं करेंगे वो और मैं रहूँगा तो फिर पड़े रहो गई वो तो आगे भी पीछे में बट नाउ द मैनी पीपल हैव हमारे डिसाइपल्स हियर ऑल दे कम्स दे आर नॉट कमिंग हियर फॉर वर्किंग हियर दे आर कमिंग फॉर महाप्रभु जी के और महाप्रभु जी देवपुरी जी का वो जो है दैट इज द फर्स्ट एंड सो माधवानंद जी ही गेंट ही फ्रॉम हिज हाउस ही वेंट आउट इट वॉज ऑनली लाइक दिस एंड ही बॉट महाप्रभु जी जो है ही केम टू माई विलेज टू माई मदर एंड हियर माई वॉज स्टेइंग इन माई हाउस And there was one very nice person in Rupavas mein. Aur wo thoda matlab theek nahi tha to dheere dheere chalte the. But he was no very great. Standing very great. Wo Mahaprabhu ji ke paas aaye the. To wahan bitha diya ki baitho aur padhao. To Bab ji ke wo nahi the itna. Chota se hi se Bab ji, Mahaprabhu ji. And wo aate the, then ghar pe aate the. फिर वो आते वो बैठते थे तो माधवानंद जी अवर स्वामी माधवानंद जी बाब जी ने निपला हमारे रूपावास में रखा है रूपाव में बहुत अच्छे लोग थे बहुत अच्छे अभी भी है अच्छा ही है लेकिन वो थोड़ा अब डब चपड़ गया हो गया यूँ से भी जगह हैं हाँ लेकिन वो नहीं होगा वो हो जाएगा वो अच्छा ही होगा वो भी अच्छा होगा और ये हमारे आश्रम में तो ये देखिए कि मेरे रूपावास गांव हैं तो रूपावास कंट्री इज द जहाँ जहाँ वेर एवर आई एम इन अदर कंट्रीज वेरी मेनी कंट्रीज तो वेर आर यू गोइंग टू रूपावास यस माय नेम इज रूपावास इन द होल वर्ल्ड 18 गांव वाले रूपा है वो नहीं जाने लेकिन वो मेरा रूपावास गुजरात वो वगैरह से भी हो लेकिन हमारे रूपावास तो वो ठेठ तक जब ही मैं जाता हूँ कि कौन से महेश्वरानंद का है कि कहाँ रूपावास और वो चल रहा है अब वो छोटे मोटे लोग हैं उसमें तो कुछ होता ही है ना और होना ही चाहिए नहीं तो फिर क्या पता करें है? तो इसीलिए सारे संसार के अंदर मनुष्य है मनुष्य ही है अब किसने वो नाम दिया उसका वो नाम दिया है सभी का नाम दिया कि किसका नाम है कौन है रे कि मैं मनुष्य हूँ बस अब हम मनुष्य है तो मैंने कई बार कहा यहाँ से और करा दिया है और करूँगा कि अब हम नहीं कहेंगे कि ये किस जाति का है जाति हमारी एक भारत की है और वो सभी को उसी को करूँगा मैं आप देख लेना हाँ ठीक है आप मेघवाल हो गरग से हो जो भी हैं सभी हैं वो है ही है लेकिन है वो मेरा मनुष्य मेरे देश का तब देख लेना उसकी आगे में लगा देंगे ऐसा उल्टा आ जाएगा हाँ है कि नहीं प्रेमानंद जी ने

0: A Premanenji kaj?
1: Ja, ja to prinesu.
0: Je Premanenji? Acha, Premanenji to hamesha iska prem. Iska naam hi prem. Prem ki bolo. Haan. To wo inka hai Premanenji ka. Premanenji ka itna bahut gaag desh hai. और देश में गांव बहुत बढ़िया है और पहाड़ों के ऊपर में भी नीचे सभी जगह है और इनका मकान या इतना बड़ा है उसके अंदर में बहुत बड़े उनके उनके माता पिता जी का है ओके लेकिन आप देखेंगे इनको देखेंगे कितना रर रर रर इसके इसका मकान कितने बड़े छुटे हैं कितने वृक्ष है अभी भी खूब वृक्ष है प्रेमानंद जी का तो प्रेमानंद जी आए मेरे पास में मैं गया था कहीं तो ये भी आए एक बार आए दो गए फिर वापस आए और ये प्रेमानंद जी का बहुत प्रेम है प्रेम की बोलो श्रीदीप नारायण भगवान की
2: जय श्री मारवानंद जी सद